अवर रामचंद्र की जय। एक मैं सज एक तो मैं आप ही मंद बुद्धि हूँ। फिसली माई लॉर्ड मंद बुद्धि एंड विदाउट दैट नॉलेज आई एम डॉल विटेड माई लॉर्ड। दूसरे सेकेंडली मोह के अधीन हूँ एंड आई एम डिलूडेड। तीसरे हृदय का कोटिल बिकॉज ऑफ द क्रूकनेस ऑफ माई हार्ट। ये सज हृदय का कुटिल और ज्ञान से रहित हूँ एंड बीइंग विदाउट दैट विजडम माय लॉर्ड। फिर ही दीन बंधु भगवान आपने भी मुझे भुला दिया। यू नो फॉर दीज रीजंस आई मे नॉट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू माय लॉर्ड बट यू आर द फ्रेंड ऑफ द हम्बल। यू आर मोस्ट कंपैशनेट माय लॉर्ड बट यू हैव फॉरगॉटन मी माय लॉर्ड। My Lord, I beseech thee. Ayodhya Pati Ram Chandra ki jai. Let us sing together the Shri Ram Stuti. Pray from the depth of your hearts. Let us pray with all love, faith and belief in Bhagavan as we sing this Shri Ram Stuti.

0: अरे गोपी, ये कैसे गा रहा है? जरा खुल के गा यार।
1: खुल के क्या गा, और भाभी के हाथ की मार कौन खाएगा? तुमको पता नहीं गोपी पे कर्फ्यू ऑर्डर लग गया, घर में गाना बजाना बंद हो गया।
2: गोपी, भजन तो भगवान की आराधना है, मैंने उसे थोड़ी मना किया। चल गा, मैं भी सुनूंगी।
1: देखो तमाशा, इस घर का दस्तूर ही नहीं डाला। कभी तो गाना बजाना पाप बंद करो, और कभी गाना बजाना पुण्य, खुल के गाओ। मैं नहीं गाता बाबा।
0: अबे ओ, अकड़ता क्यों है? गा गा।
1: अकड़ेंगे क्यों नहीं भैया, आखिर हम भी तो कलाकार हैं, कलाकार। ओ नंदिनी, अरे भजन की तैयारी कर, मंडली को बुलाओ। भैया, आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
0: अरे बाबा, किसी भी जमाने की सुनाओ, मगर सुनाओ जरूर।
2: सियावर रामचंद्र की जय।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

पवन हरे। श्री सरस्वती माता की जय। श्री रामायण माता की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सदगुरु के दंडवत जय जय सीताराम। आप लोग आराम बैठे, सो कंफर्टेबली ऑल ऑफ यू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।

ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है, है, है, है। ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है, ना राग है ना द्वेष है, अघोर शिव महेश है।